0: केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना। केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा यही भाद्र 20 गते शनिबारका दिन जीएम कार्डियोलोजिस्ट मुटुरोग विशेषज्ञ।
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम।
0: यति बेला बिहानको 9 बजेको छ।